0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
4: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तों वी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: करो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय दिस इज आयुष्मान खुराना एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो हांजी।
4: मैं

0: ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।
2: ਲਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕਾ ਬਕਾਇਆ ਟੋਲ ਆਪਕੀ ਰਫਤਾਰ ਕੋ ਧੀਮਾ ਕਰੇ, ਇਸੀ ਲਈ हमने NSW गवर्नमेंट के साथ मिलकर बकाया टोल प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब हम डाक की जगह समय रहते डिजिटल रिमाइंडर भेज रहे हैं, साथ ही टोल नोटिस पर लगने वाली एडमिन फीस भी हटा दी गई है ताकि भुगतान करना आपके लिए आसान हो सके, जुर्माने का जोखिम न उठाएं। आज ही लिंक्ड टैग अकाउंट खोलें और अपने बकाया टोल का जल्दी समाधान करें। अधिक जानकारी के लिए देखें linked.com.au/nswtolls।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
4: सत श्री अकाल शुभ बोए बादशाह, तो तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
3: हांजी रेडियो।
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: वेखो दस्तार तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
3: हांजी रेडियो।

0: तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट choice.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
4: रेडियो हांजी 16748।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वादा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी हां जी हां जी
1: हां जी हां जी हां जी रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: करो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हां जी मैं हूं एका और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो, हां जी 1674 एएम बेबी।
4: आ जा प्यार की होड़ी ले।
5: दिल बोले तो
6: हार्ट हार्ट।
7: हां यार सौदा सौदा।
6: ओहो
4: दोनों डील कर सी ले।
6: टाइट टाइट, वेरी टाइट।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
4: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
5: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेर बी टोयोटा दे नाल।
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212 216

तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसड़, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours. Create

शेम ऑन यू. एनीवेज, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा है, इन्ह देशों की तरफ तो. इनफैक्ट अज की तरीक दे विच तुसी पॉलिन हैंसन जो मर्जी बोल लवे एंथनी एल्बनीज के खिलाफ, पर मैं पिछले एपीसोड दे विच भी दस्या सी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अज की तरीक दे विच एंथनी एल्बनीज कर रहे ने, जिस किस्म दे नाल लिख के लै लो ये मौजूदा लेबर सरकार ने आस्ट्रेलिया नू इस पूरे पैसिफिक खिते दे विच मजबूत करन दे लई कोशिशां कीतियां ने ना, वेरी विजिबल, वेरी मच विजिबल. चाइना दे गेड़े भी कढ़दे हो, चाइना दे नाल हथ भी मिलाने हो, ते चाइना दे अगेंस्ट तुसी लॉबिंग भी तैयार कर लैंदे हो. सल्यूट ऑन यू, एबसोल्यूटली फैंटास्टिक जीनियस एंथनी एल्बनीज. एदा हुंदी है डिप्लोमेसी. हुण एक होर चीज़ है, एक क्वैड भी बनया होया जे तुहाडे याद होवे, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ते अमेरिका. अमेरिका नू छड़ के बाकी तिने देश कट्ठे रहना चाहते ने, ते इहदे च अमेरिका की बजाय इंडोनेशिया नू रला रहे ने हुण ए, और न्यूजीलैंड नू भी रला रहे ने. अमेरिका नू क्यों? क्योंकि अमेरिका दे उत्ते भरोसा नहीं किया जा सकता अज की तरीक च. जिवें स्टार्टिंग च दस्या सी, जिहड़ा नेटो का नहीं हो सकिया वह साडा की होगा. सो जापान दे प्रधानमंत्री आते ने और सुनाई तक आई ची. मैंने यह सीगा कि बुलेट ट्रेन ते गल होगी, ये होगी, वो होगी, इंडस्ट्रीज़, बट वो गल्लां उन्ना तवज्जो नहीं दिती गई. होया की है कि 62 बिलियन डॉलर का निवेश चाइना, जापान ने कहा है कि अगले 10 साल दे विच इंडिया दे अंदर करना है, ताकि सैमी कंडक्टर, हाईटैक जिहड़ी इंडस्ट्री है उहदे च चाइना की बादशाहत नू खत्म किया जा सके. गल नू समझो जरा, सैमी कंडक्टर्स जिहड़े ने उस दे खेतर दे विच चाइना दा सरदारी है, दबदबा है. चाइना तो बाद जे कोई कंट्री, अमेरिका ही है डेफिनेटली, चाइना तो बाद नहीं बल्कि चाइना तो भी पहला, ते अमेरिका ते चाइना तो बाद जे कोई कंट्री काउंटर कर सकती है तो इंडिया कर सकती है. पर जिहड़ियां इह सैमी कंडक्टर चिप्स ने, हाईटैक इंडस्ट्री है, इहदे लई चाइना दी बादशाहत क्यों है और क्यों वधदी जा रही है, इनफैक्ट अमेरिका तो भी अगे क्यों जा रही है. रेयर अर्थ मिनरल्स, तुहाडे नाल पिछली बार गल कीती सी, दुर्लभ खनिज पदार्थ, दुर्लभ नहीं हैगे उह, बस उहनां नूं उहनां दी प्रोसैसिंग, उहनां दी सुधाई बड़ी दुर्लभ है. उह सुधाई करन दा कम जापान इंडिया दे लई करेगा और उह दुर्लभ खनिज इंडिया नूं आस्ट्रेलिया देगा, ताकि एक तरह का एक ट्रायंगुलर नैक्सस चाइना दे अगेंस्ट खड़ा हो सके. इंडिया च सस्ती लेबर है, आस्ट्रेलिया दे कोल मिनरल्स ने, जापान दा पैसा है, बन गई गल, सप्लाई चेन बन गई ना, और तिने देश इस चीज़ नू इस्तेमाल भी करनगे. इनफैक्ट इंडोनेशिया ते चाइना भी, न्यूजीलैंड भी करनगे. एक बहुत वधिया मार्केट आपस दे विच ही है, आपस च ही कमाई जाओ, आपस च ही खड़ाई जाओ. एक चीज़, एक जदों तुसी आर्थिक तौर दे उत्ते किसी देश नू सट मारोगे तो उना दे उत्ते जिहड़ी इकनोमिकली जिहड़ी सट बजूगी उहदा असर तो पूरी तरीके दे नाल दिखूगा, पूरा बहुत व्यापक असर होएगा, ये गल तो मानते हो. सो इस असर नू होर ज़्यादा बढ़ाने दे लई इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड का दौरा, जिवें सनाई तकाईची दे नाल मीटिंग खत्म हुंदी है, फिर मोदी साहब 6 तो 11 जुलाई तक यह 3 देशों का दौरा करते हैं. इन्हों 3 लैग्स दे विच समझो, लैग 1, लैग 2, लैग 3, 3 लत्तां मोदी साहब दियां. पहली लत्त इंडोनेशिया, समुद्री रस्ते की चाबी है इंडोनेशिया. इंडोनेशिया दुनिया दे विच वाहद ऐसा देश है दुनिया भर के जिहड़े कई छोटे छोटे इन्हां दे टापू कितें कितें खिंडे हुए ने. इंडोनेशिया नूं ही नहीं पता हैगा कितें कितें किन्ने किन्ने इन्हां दे टापू खिंडे पए ने. छोटे छोटे टापूआं नूं रला के एक बहुत वड्डा, एक मेनलैंड भी उन्हां दी हैगी है जिथे जकार्ता राजधानी है, बट उस तो इलावा भी उन्हों का. और इस पूरे खिते दे विच जे इंडोनेशिया प्लस पापुआ न्यू गिनी दोवां नू आपस च जोड़ दिए, एक नैक हैगी है जिहड़ी सदरन चाइना सी दे विच बड़े धड़ल्ले दे नाल चाइना नू रोक सकती है. आस्ट्रेलिया दे हक च PNG तो आ ही गया क्योंकि वह ओशन पीस ट्रीटी दे विच हैगे ने, शामिल ने. इंडोनेशिया भी आस्ट्रेलिया ते इंडिया तो उल्ट नहीं जा रहा, हो गया ना काउंटर. हुण समुद्री रस्ते की चाबी मैं इस करके कहा सी क्योंकि इंडिया ने इंडोनेशिया दे विच आके जिहड़ा समझौता किया वह की किया, समुद्री सुरक्षा का समझौता, नैवल ब्लॉकेड, कि जे कलू कितें कोई हुंदियां ने सबमरीनस आप रल के बनावांगे, तुहानू नेवी शिप्स दवांगे, इंडिया जो बना रहा हैगा मेक इन इंडिया के तहत तुहानू दिंदे आ, तुसी लो, तुसी साडे तो खरीदो ते अपनी नेवी नू मजबूत करो. सो एक नैवल ब्लॉकेड करनी है कि आस्ट्रेलिया तक जे कोई खतरा आंदा है तो घेरा पा लेना.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
0: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
4: हां जी हां जी,

0: हाँ जी
1: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
4: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

वे सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।

ट्रेवल्स विंग रोवर, हांजी 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो हांजी AM।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
4: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावना को समझो।
5: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर। रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हाय हेलो, दिस इज अली असगर हियर ऑन रेडियो हाजी 1674 AM। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: You are listening.
1: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
1: Radio Haji
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी रेडियो
3: listening Australia's number one Radio Hanji
4: Radio Hanji
5: Radio Hanji 1674 में समा हो चुका। आज दी कहानी पढ़िए, आस करते हैं कि तुसी राजी खुशी हो गए, चढ़दी कला च हो गए। समा हो चुका आज दी कहानी दा। ढिल्लों साहब ने जदों दा धी दा व्याह तरिया उदों दी सेहत थोड़ी उत्ते थले रहन लग पई, शुगर दे लेवल सैट नहीं होंदे, डॉक्टर कहिंदा स्ट्रेस ना लिया करो, परेशानी दे नाल चिंता दे नाल इह लेवल कंट्रोल च नहीं आ सकदे। डॉक्टर दी धी दा विआह होवे ते उहनूं पता होवे, मैं चाहवां जां ना चाहवां चिंता किदां नहीं होगी। इक ते इन्ने सारे खर्चे, इन्ने सारे कामकार, सारे इंतजाम करने ने, नवे घर धी ने जाना, उस चीज की अलग तो चिंता, तो वड्डी चिंता इस चीज की भी कि वो धी जितों पल भी पासे रह के दिल घटना शुरू हो जाता। जिहड़ी मेरी मां तो वध मेरा ख्याल रखती, कई बार तो जदों जिहड़े हिसाब के नाल विचरती है, जिदा पिछों भज भज के चीज़ां फड़ाउंदी है, पापा तुसीं आ भुल गए, पापा तुसीं आ करना ही, पापा तुहाडा बिल रह गया तरन वाला, पापा तुहाडा परस घर भुल गया, पापा तुहाडा फोन मैं चार्ज ते ला दिता ही, अज पापा तुहाडी पसंद की सब्जी बनाई है। वो धी जिहड़ी चेहरा वेख के दस दें कि हुण पापा का चाह पीण नूं जी करन लिया,

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: करे बहु भांति।
1: नहीं तुलराव नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार।
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे चर जीव है, महा उदास तपीसर थी वै।
1: अगन माए हो प्राण कनक अस है वो नाम।
0: न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयमत साधन।
1: निमक निमक कर सिर कटावे, तो भी हो मैं मैल न जावे।
0: हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे।
1: मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्व गुमान न मन ते हुटे।
0: सोच करे दिन सा रात, मन की मैल न तन ते जात।
1: देही को वो साधना करे, मन ते कबू न बिख्या टरे।
0: जल तो वह बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत।
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच।
0: बहुत स्यानप जों का पाव व्यापै, अनक जतन का तृष्णा त्रापै।
1: एक अनेक गन्नी बुझै, कूट पाव दरगह नी सिजै।
0: छूट सनाही उब पयाल, मोहे व्यापै माया जाल।
1: अवर करतु सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिन्नी माने।
0: हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए।
1: चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे।
0: जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सर गावे।
1: जे को अपनी सुभा लोरे, सास सिंह ए हो मैं छोरे।
0: जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की शरणी परे।
1: जिसन को पव दस प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा।
0: सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाकै मिटै बिमान।
1: आपस को जो जाना नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा।
0: जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना।
1: मन अपने ते बुरा मटाना, पेखै सगल शिष्ट साजना।
0: सुख दुख जन समदृष्टि ता, नानक पापो निहले पा।
1: निर्धन को धन तेरो नाओ, निथावे को नाव तेरा थाओ।
0: निमाने को प्राप्त तेरो मान, सगल कटा को देव दान।
1: कर्ण करावन हर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी।
0: अपने गत मित जान हो आपे, अपन संग आप प्रभ राते।
1: तुमरी उस्त तुम ते होए, नानक अवर न जानस कोए।
0: सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म।
1: सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, सास संग दुर्मत मल हिरिया।
0: सगल उद्यम मैं उद्यम भाला, हर का नाम जपो जी सदा।
1: सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जस नुर सुन बखानी।
0: सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जी घट बसै हर नाम।
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भगजना कै मन विश्राम। अठ तीन श्लोक।
0: निर्गुण यार ए आनिया, सो प्राप्त सदा संभाल। जिनकी आतिश चीत रख, नानक निभी नाल। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: मैया की गुंचित परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी।
0: जिंतु साठ सवार सिगारिया, गर्भ अगन मह जिने उबारिया।
1: बार बस्ता तुझे प्यार है दूध, पर जो बन भोजन सुख सूद।
0: बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख पया बैठ कौ दैन।
1: एहो निर्गुण गुण कुछ न बुझै, बख्श देहो तो नानक सीजै।
0: जय प्रसाद धार ऊपर सुख बस है, सुत प्रात मीत बनता संघस है।
1: जय प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला।
0: जय प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा।
1: दीने हस्त पाव कर नेत्रसना, तिसे त्याग अवर संगरचना।
0: ऐसे दुख मूड अंध व्यापे, नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे।
1: आद अंध जो राखन हा, तिस्यो प्रीत न करे गवार।
0: जाकी सेवा नम निध पावे, तासो मूड़ा मन हिलावे।
1: जो ठाकर ससदा हजूरे, ताको अंधा जान दूरे।
0: जाकी टहल पावे दरगह मान, तिसह बसारे मुग्ध अजान।
1: सदा सदा भूलन हार, नानक राखन हार अपार।
0: रतन त्या कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै।
1: जो छना सुअस्त्र कर मान, जो होवन सो दूर परान।
0: छोड़ जाए तिसका शर्म कर, संग सहाय तिस पर हार।
1: चंदन लेप उधारे तोए, घर तो पीर प्रसम संग होए।
0: अंध कूप मैं पतत विकराल, नान काढ़ लेहो प्रभ दयाल।
1: दूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात।
0: बाहर भेखांतर मल माया, छप सनाहे कछ करे छपाया।
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लो स्वान।
0: अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरह अथाह।
1: जाके अंतर बसे प्रभा, अपना तेजन सहज समा।
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो उड़न बिहावे।
1: कहा बुजात बुझै डोरा, निष्किय तो समझे भोरा।
0: कहा विष्णु पद गावे गुंग, जतन करे तो पीसुर भंग।
1: कहा पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत कुहा उस गवन।
0: करतार करुणा मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे।
1: संग सहाय सुआवे न चीत, जो बह राय ता सो प्रीत।
0: बलुआ के ग्रह पीतर वसै, आनंद केर माया रंग रसै।
1: दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत।
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह।
1: यह जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लिहो आपन कर कर्म।
0: ठूठा कर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास।
1: मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुगनेरे।
0: कोई न जाने तुमरांत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत।
1: सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सुआज्ञाकारी।
0: तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास दा कुर्बानी।
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भगत जना कै मन विश्राम।

0: दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस कारण भी खोट गवावे
1: एक पी ना दे दस पी हिर ले ताऊ मूड़ा कहो कहां करे
0: जिस ठाकर सो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कार
1: जाके मन लागा प्राण मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया
1: अगणित साहु अपनी दे रास खात पीत बरते आनंद उलास
0: अपनी अमान कछ बहुर साले अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रति तापी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे
0: जिसकी बस सागे राख है पब की गया माने माथे
1: उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल
0: नानक पांत माया के हे सर पर होत जान अनेक
1: बिरकी छाया सो रंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे
0: ज्योति सह सो चालन हार लपट रहो ते अंध अंधार
1: बटाऊ सो जो लावे नेह ताको हाथ ना आवे के हे
0: मन हर के नाम की पीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन तन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया
0: मिथ्या राजु मंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता
0: मिथ्या त्रोम अभिमान मिथ्या आप ऊपर करत गुमान
1: अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हस पर दरुक हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद
0: मिथ्या चिन पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा
0: बिन मुझे मिथ्या सप है सफल दे नानक हर हर नाम लै
1: बिरथी साख्त की आरजा सच बिना कह होवत सूचा
0: बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध
1: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाई मेघ बिना ज्यों खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन बिथे सब काम जो कर प्रते निरार धाम
1: तन तन ते जन जिह घट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ
0: रहत वर कछ अवर कमावत मानी पीत मुखो गंडलावत
1: जानन हार प्रभु प्रवीण बाहर भेख न काहू पीन
0: और उपदेश है अपना करै आवत जावत जन मै मरै
1: जिसकै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार
0: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उंजन चन प्राता
1: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप मान
0: आपे आप करत नवेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा
1: उपाप स्यान सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत
0: पावे तिसले लड़ लाए थान थनंत रहा समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भग जना कै मन विश्राम अठ पंज सलोक
1: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे
1: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याज सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग
1: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हंडावे तिसे त्याका तब लुभावे
0: जय प्रसाद सुसे सुई जय मन आठ पहता का जस गवी जय
1: जय प्रसाद तुझ सब को मान मुखता को जस रसन बखान
0: जय प्रसाद तेरा धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
1: प्रभ जी जब दर गए मान पावे नानक पथ सेती कर जावे
0: जय प्रसाद और कंचन देही लिवलाओ तिस नाम स्नेही
1: जय प्रसाद तेरा उला रह तो मन सुख पावे हर हर जस कह तो
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकै मन सनी प्रभ ठाकर प्रभता कह
1: जय प्रसाद तुझको न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभ उचे
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे
1: जय प्रसाद आभूखन पहरी जय मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय
0: जय प्रसाद असुहस्त असुवारी मन तिस पर को कबू ना बिसारी
1: जय प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरोय प्रभ अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत सहते आई
1: सहते आ जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है
0: जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप
1: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह
1: जय प्रसाद सुनै करनाद जय प्रसाद पेख बिस्माद
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सो सहजे बसना
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है
0: जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सो सहज समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू पट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप
0: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूर है
1: जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच
0: जय प्रसाद सब कीरत होए नानक जाप जपै जप सोए
1: आप जपाए जपै सो नाओ आप गाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास
1: सब सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए
0: सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हू लया
1: जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक न कह कछु न हाथ
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ छे श्लोक
1: ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਖੂਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪੂਜੇ ਪਵਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੁਬਹੁਤ ਨਵੇਰਾ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗੇ ਕੂਪਰ ਜਤਨ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੇ ਕੌਣ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੇ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਂਗਾ ਪੈਰ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਘੁਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹੋਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਾ ਬਾਪ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦਿੜੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਟ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਰਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਛੜਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
0: ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਾਰੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਗੜਗੜ ਡੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੇਟੈ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੈ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਬ ਖਿਆਨੈ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਾ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ
0: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਸੱਤ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਦਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦਿਸ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰ ਜੇਕ ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਬਿਮਾਨ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਨ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸੰਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਰਸੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮੁਲ ਯੁਗਤਾ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਆਨ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਉਪਰ ਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕੈ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਰ ਜਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹਿਬੁੱਧ ਤਿਆਗ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਹਿਤਾ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਸ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਧਾਖਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕਰ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुकुत जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ अठ श्लोक
1: उतार है जो अंतर नाम सर्व मैं पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक हो अपारस सगल निस्तार है सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: मिथ्या नाही रसना परस मन में पीत निरंजन दर्श
1: पर तेरे रूप ना पेख है नेत्र साध की टहल संत संग हेत
0: न सुने काहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा
1: गुर प्रसाद बिख्या पर हर है मन की बासना मन ते टर है
0: इंद्री जित पाई दोख से रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस
1: वैष्णो सोजे सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए भिन्न
0: कर्म करत हुए ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल तर्म
1: काहु फल की इच्छा नहीं बाछा है केवल पात कीर्तन संग राचा है
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानक हो वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भक्त का रंग सगल त्याग है दुष्ट का संग
1: मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजा सगल पार ब्रह्म
0: सत्संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नितनीत मन तन अर्पै विष्णु प्रीत
0: हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सुपंड जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म सुध है
0: राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे सुपंडित फिर जो न आवे
0: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुख में जाने स्थूल
1: वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गाथ होए साध संग पावे जन पोए
0: कर कृपा अंतर उधारे पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारे
1: सर्व रोग औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: काहू जुगत किते ना पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास
0: आत्म राम तिस नदरी आया दास संतर भाय तन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगै प्रवान
0: अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे
1: सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास
0: की आ गया तुम हितावे जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरक तैसा सोग सदा अनंत है नहीं बियोग
0: ऐसा स्वर्ण तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी
1: तैसा मन तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान
0: जो वर्ताए साई जुगत नानक ओ प्रह कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का राख है तैसा तिनाओ
0: आपे कन करावन जोग प्रभावे सुई फन होग
1: पसरे आप हुए अंत रंग लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग
0: जैसी मत दी तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अवनाश
1: सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ नौ श्लोक
1: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट भय तीर्थ वासी कई कोट मन पर महदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है
0: कई कोट नवत नाम ते आवे नानक करते का अंत न पावे
1: कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर
1: कई कोट पर दर्ब कोहिर है कई कोट पर दुख ना कर है
0: कई कोट माया सुरमा है कई कोट परदेश भरमा है
1: जित जित लाभो ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिज्जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए
0: कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट ससिर सूर नखत्र कई कोट देव दानविंद्र सिर छत्र
0: सुमदरी अपने सुतार है नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है
1: कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र
0: कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट किए चरजीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी
0: कई कोट जा किन प्रसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा
1: सब ते नेरा सब हूते दूर नारक आप लिप्त रहा भरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर्क सुर्ग निवासी
1: कई कोट जन मै जीव मर है कई कोट बहु जूनी फिर है
0: कई कोट बैठती खाए कई कोट खा ले तक पाए
1: कई कोट किए धनवंत कई कोट माया मह चिंत
0: जह जय भाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभ के हाथे
1: कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी
0: कई कोट प्रभ को खोजन ते आत्म मैं पार ब्रह्म नहंते
1: कई कोट दर्शन प्राप्त आस तिन को मिलियो प्रभ विनाश
0: कई कोट मांग सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग
1: जिनको है आपसु प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन
0: कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार कई ज्योत कीनो विस्तार
0: कई बार पसरो पसार सदा सदा एक अंकार
1: कई कोट कीने बहु पात प्रभ ते होए ब्रह्मा हे समात
0: ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म परगास
0: कई कोट तत् के बेटे सदा निहारे उसको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सद सद ही जीवे
0: कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सहि समावे
1: अपने जन को सास सास मारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे
0: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दस श्लोक
1: कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार नै जल थल महियल सोए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: करन करावन करने जोग जो तिस पावै सोई होग
1: किन मैं थापू थाप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा
0: हुक्मे तार अतर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म सुमावै
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार
0: कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहा समाई
1: प्रभावै मन गत पावै प्रभावै ता पाथर त्रावै
0: प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण पाखै
1: प्रभावै ता पथ तुधारै आप करै आपन बिचारै
0: दोहसरिया का स्वामी खिलै विकसै अंतर जामी
1: जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै
0: हो मानक ते क्या होया वै जो तिस पावै सोई करावै
1: इसका हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे
0: अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै
1: परमे भूला दह दिसतावै निमुख माहे चार कुंट फिरावै
0: कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन ना मिले
1: खिन मह नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज
0: जाका दिष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दस पलटावै
1: जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा ना गने जगदीश
0: जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई
0: इसका बल नाही इस हाथ कर्म क्रम सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो
0: कबहू ऊंच नीच में बसै कबू शोक हर खरंग हसै
1: कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू उब काश पयाल
0: कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिलावन हार
1: कबहू नृत करै बहु भांत कबहू सोए रह दिन रात
0: कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो त्रवाल
1: कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पे खारी नीच का साजा
0: कबहू अब कीर्त में आवै कबहू भला भला कहावै
1: ज्यों प्रभु राखै तिवि रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै
0: कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मौन धारी लावै ध्यान
1: कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भरमै भरमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावै ज्यों प्रभु पावै तिवै नचावै
0: ज्यों तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोई
1: कबहू साध संगत ए हो पावै उस स्थान ते बहर न आवै
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते करंग सदा विसै पार ब्रह्म कै संग
0: ज्यों जल मै जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समान
1: मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ ग्यारह श्लोक
1: सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जिसके अंतर राज अभिमान सुनर पाती हो स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत
0: आपस को कर्मंत कहावै जन्म मरे बो जोन भरमावे
1: धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावै नानक इहा मुक्त आगे सुख पावै
1: धनवंता होए कर गुर बावै तरन समान कछ संग न जावै
0: बहु लश्कर मान को ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत
0: किसे न बदे आप अहंकारी तरम राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जाका मिटै बिमान सो जान नानक दर गै परवान
0: कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार
0: अनक यत्न करा तुम निद्रवै हर दर गै को कैसे गवै
1: आप सुखो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै
0: सर्व किरिंजा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते का छोए तब इसको सुख नाही कोए
0: जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्व जोन मैं फिर
1: जब तारे को बैरी मी तब लग निचल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन सुमाए तब लग धर्म रह देश जाए
1: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे
0: सैस कटेला कोट तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे
0: बिना संतोक नहीं को राजा सुपन मनोत बिते सब काज
1: नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए
0: करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाव
1: करन करा रावण करना हार, इसका हाथ कहां विचार।
0: जैसी दुष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप तब सोए।
1: जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हु कै संग।
0: पूजा देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक।
1: मरे न बिन सह आवे न जाए, नानक सद ही रहा समाए।
0: आप उपदेश है समझे, आप आपे रचिया सब कै साथ।
1: आप कीनो आपन विस्तार, सब का छुसका ओह करना हार।
0: उस ते बिन कहो किछ होए, थान तनंतर एक सोए।
1: अपने चले तब करना हार, कौत करे रंग अपार।
0: मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए।
1: सत सत सत प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने बिख्यानी।
0: सच सच सच सब की ना, कोड मदे किने विरले चीना।
1: भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर पार अनूप।
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी स्वर्ण बखानी।
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत।
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भगत जना कै मन विश्राम। 8-12 श्लोक।
1: संत शरण जो जन परै, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका, बहर बहर अवतार। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: संत के दुखन हार जा कटै, संत के दुखन जमते नहीं छुटे।
1: संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए।
0: संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सुबाते ही।
1: संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए।
0: संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक बीतर।
1: संत के दुखन ते मुख पावे, संतन के दुखन कागजों लवे।
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन कर्माए।
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले।
0: संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए।
1: संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ता ओए भीगत पाहे।
0: संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिंटिक न पाई।
1: संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा।
0: संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी यार दीन।
1: संत के निंदको सर्व रोग, संत के निंदको सदा बिजोग।
0: संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख।
1: संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी के सह का निमित।
0: संत के दुखी को डान लागे, संत को दुखी को सब त्याग।
1: संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी।
0: संत का दुखी जन में मरे, संत के दुख ना सुख ते टरे।
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए।
0: संत का दुखी अज बीते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे।
1: संत के दुखी को ध्यान परमाइया, संत का दुखी उजड़ पाइया।
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा।
1: संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीजा पे ही खाहे।
0: संत के दुखी को अवर ना रखन हार, नानक संत भावे ता ले उबार।
1: संत का दुखी ओ बिल लाए, जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए।
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पावक इधर नहीं त्रापे।
1: संत का दुखी छुटाए किला, जो बुआर तिल खेत माहे बहिला।
0: संत का दुखी तरम ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत।
1: किरत निंद का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया।
0: संत का दुखी बिगरूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिला सजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी मां ना मरे ना जीवाइय।
0: संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा।
1: संत के दुख न तृष्णा कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए।
0: पया कितन मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई।
1: सब कर तिसके ओहो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार।
0: तब की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्या वो सास गिरा।
1: सब कछ वर्त है तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया।
0: अपना खेल अब करने हार, दूसर कौन कहे विचार।
1: जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम, दे बड़ भागी नानक जन से।
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भगत जना कै मन विश्राम। 8-13 श्लोक।
1: तजो सियानप सुरजन हो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: मान की टेक विधि सब जान, देवन को एक है भगवान।
1: जिस कह दिया रह अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए।
0: मारे राखे एक आप, मान कै कुछ नाही हाथ।
1: तिसका हुक्म बूढ़ सो खोए, तिसका नाम रह कंठ परोए।
0: सिमर सिमर सिमर पर सोए, नानक बिघ्न न लागे कोई।
1: उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार।
0: निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो।
1: नैनो पिव ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग।
0: चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद।
1: हर हर कर्म सर्वन हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा।
0: वडबागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर की गुण गाहे।
1: राम नाम जो कर है विचार, से धनवंत गनी संसार।
0: मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी।
1: एको एक एक पछाने, एतुत की हो सो जी जाने।
0: नाम संग जिसका मन माने, नानक तिन निरंजन जाने।
1: गुर प्रसाद अपन आप सूझे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे।
0: सा संग हर हर जस कह, तू सर्व रोग त्यो हर जन नहत।
1: आंदर कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मैं सोई निर्वाण।
0: एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा।
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस है ना लागह दुख।
0: जिसको हर पर मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे।
1: जिस पर अपना कृपा कर, सो सेव कहो किसते डरे।
0: जैसा सत तैसा दिष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया।
1: सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सा बूझिया।
0: जब देखो ता सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल।
1: नह किछ जन्मै नह किछ मरै, आपन चलित आप ही करै।
0: आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट, आज्ञा कर सारी तारी सब सिस्टर
1: आपे आप सगल मह आप अनक जुगत राज थापो थाप
0: अविनाशी नाए किच खंड तारन धार रहो ब्रह्मांड
1: अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तनमंत
1: प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारन
0: आपे मेल लय कृपाल गुर का सजो पै निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करह बड़ भाग है
0: नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो किच करे सो प्रभु कह रंग सदा सदा सह हर संग
0: सह सुबह होवे सो होए करने हार पछाण है सोए
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सत है सा दृष्टाना
0: जिस ते उपजे तिस माहे सुमाए ओए निधान ओए सुख निदान उन्हों बनाए
1: आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ चौदह श्लोक
1: सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार जा कै स्मरण उदरिया नानक तिस बलिहार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: टूटी गानन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे
0: रे मन मेरे सदा हर जाप अवनाशी प्रभा पे आप
1: आपन की आकछु न होए जी सौ प्राणी लोचै कोए
0: तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह है प्रभु की जोत सगल घट सो है
0: तनवंता होए क्या को गर्व है जा सब की तिसका दिया दर्व है
1: अतसूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे
0: जे को होए बह दातार तिस दिन हार जाने गवार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग नानक सोजन सदा अरोग
0: ज्यो मंदर को था मैं थमन त्यो गुर का शब्द मने अस्थमन
1: ज्यो पाखान नाव चढ़ता रह प्राणी गुर चरण लागत निस्तार है
0: ज्यो अंत का दीप प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास
1: ज्यो महाउद्यान मह मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे
0: इन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए
0: दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्या तू तसै चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे जान
0: कौन बस ताई तेरे संग लपट रहे हो रस डूबी पतंग
1: राम नाम जा फिर दे माहे नानक पद से ती कर जाहे
0: जिस वकर को लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया
1: ताजब मान ले हो मन मूल राम नाम हृदय महतूल
0: लाद खेप संत संचाल अवर त्या विखिया जंजाल
1: धन धन कह सब कोए मुख उजल हर दर गै सोए
0: हो वापार विरला वापार है नानकता कै सद बलिहार है
1: चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो
0: साध की तूर करो स्नान साध उपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वड भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है
0: अनक विघन ते साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस चाख है
1: कोट गही संत है दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया
0: मृतु को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार
1: सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे
0: सब तिसका उकरने जोग तिस बिंदु सरहुआ न होग
1: जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल एहे करनी
0: कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की परती तिस जन आवे हर प्रवचीत
0: भगत भगत सुनिए तिहलोए जाके हृदय को होए
1: सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुख कहत
0: साची दिस साचाया कार सच वर्ते साचा पासार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ पंद्रह श्लोक
1: रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रापिन तिसह बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: अविनाशी परम मन में राख मान की तू प्रीत त्याग
1: तिसते परे नाही कुछ कोए सर्व निरंतर एको सोए
0: आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद
0: सातरे की चरनी पाओ नानक कै मन इहो अनुराओ
1: मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग
0: हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर
1: आनंद रूप मंगल सत जाकै सर्व थोक सुनिए कर ताकै
0: राज मैं राज जोग मैं जोगी तब मैं तभी सरगस्त मैं भोगी
1: त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया
0: जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे वगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवै से
1: तेह गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए
0: ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग नाना भीख करै करंग
0: नाना बितकीनो विस्तार प्रभ बनासी एकंकार
1: नाना चलित करे खिन माहे पूरहे ओ पूर्ण सब ठाए
0: नाना बित कर बंत बनाई अपनी कीमते आपे पाई
1: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ
0: नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के धारे आकाश पताल नाम के धारे सगल आकार
1: नाम के धारे पुरिया सा भवन नाम कै संग उदरे सुन सरवन
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
0: ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੇ ਸੋ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆਸਵ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰ ਨੈ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
0: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮੀਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਜਿਸ ਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਕੋਈ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ
0: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕਲੇ ਗੁਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ 816 ਸਲੋਕ
1: ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ
1: ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਨਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ
0: ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਵਤਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ
1: ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਸੁਨਤਾ
0: ਪੂਜਨਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ
0: ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
1: ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ
0: ਬਸਤ ਮੈਂ ਲੈ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ
1: ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕੇ
0: ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ
1: ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ
0: ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ
1: ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੁਮਾਰੈ
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ
0: ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ
1: ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨ ਲਾਖੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੇਵਕ ਉਚ ਤੇ ਉਚੈ
1: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
0: ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਖੈ ਪਸਮ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ
0: ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤਬ ਪਾਤ ਤਿਸ ਕੈ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੈ ਜਾਤ
1: ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ
0: ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ
1: ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਐ
0: ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਟਾਇਆ
1: ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਸੰਗ
0: ਨਾਮ ਰਸ ਚੋ ਜੰਤਪਤਾਨੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨ
1: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਬਤ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ
0: ਲੋ ਜਾਚੇ ਵਾਦਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਂਦਾਤ
1: ਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਹੈ ਸਮਾਏ
0: ਜੋ ਹੋਆ ਹੋ ਵਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ
1: ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹੇ ਏਕ ਨ ਜਾਨੋ
0: ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੈ
1: ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ
0: ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ
1: ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸਾ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ
0: ਅਵਰ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ
1: ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ 817 ਸਲੋਕ
1: ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ
1: ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ
0: ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ
1: ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ
0: ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ
1: ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ
0: ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵੈ
1: ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
0: ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ
1: ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ
0: ਵਿਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਨ ਹੈ
1: ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਓ ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ
0: ਸਰਵਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਦਾਤਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ
0: ਸਹਿਰ ਸਿਆਨ ਪਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
1: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ
0: ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ
1: ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੁਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ
0: ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ
1: ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
0: ਜੇ ਬਾਏ ਕੁਸਤਤ ਅਨੇਕ ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇ
1: ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ
0: ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ
1: ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਮਰਹਿ
0: ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
1: हो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए
0: प्रता नाही कदे विनाश जाके मन पटे गुणतास
1: आठ पहर हर का नाम ले सच उपदे सेव कौ दे
0: मोह माया के संग न लेप मन में रख है हर हर एक
1: अंधकार दीपक परगासे नानक पर मोह दुख तहते नासे
0: तब्त माहे ठांड वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे
0: पौ चुका निर्भय होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे
1: जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी
0: चित पाई चूके भव गवन सुन नानक हर हज सरवन
1: निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही
0: अपने चित बाबा बनाए अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए
0: पोत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगा साध कै संग
1: रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ अठारह श्लोक
1: साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कमाव ना नानक हो तन सार सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार
1: अवरो पासा मीत बिसार हो चरण कमल रिद मैं उरतार हो
0: करम कारण सो प्रभ समर्थ दृढ़ कर गहो नाम हर रथ
1: एहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत
0: एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे
1: जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पाव है
0: जिस को नित बाछ मीत सो सुख साधु संग परीत
1: जे शोभा को कर है भली करनी सा शोभा भज हर की शरणी
0: अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए
1: सर्व निदान मह हर नाम निदान जप नानक दर गए परवान
0: मन पर बोधो हर के नाए दर्द स्तावत आवे ठाए
1: ताको बिघन लागे कोए जाके हृदय बसै हर सोए
0: कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: भव बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म परगास
0: सित कर जाए बसे अबनासी कहो नानक काटी जमफासी
1: तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा
0: आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव
1: क्यों रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार
0: अनक पावन छूटन हारे सिमर शास्त्र वेद विचारे
1: हर की भगत करू मन लाए मन वंचित नानक फल पाए
0: संग न चालस तेरे धना तू क्या लपटावै मूर्ख मना
1: सुत मीत कुटांबर बनता इन ते कहो हो तुम कवन सनाथा
0: राज रंग माया विस्तार इन ते कहो हो कवन छुटकार
1: अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी
0: जिन दिए तस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना
1: गुर की मातू लिहे आने भगत बिना बहु डूबे स्याने
0: हर की पद करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे
0: आप जप हो अवरै नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पाओ
1: सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ
0: गुण गावत त्रि त्रस मैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल
1: होहे अचिंत बसै सुख नाल सांस ग्रासर नाम संभाल
0: छाड़ सियान सगली मना सात संग पावे सजतना
1: हर पूंजी सांच करो व्यवहार इहां सुख दर गै जयकार
0: सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्त कलेख
1: एको जापे को सालाहे एक सिमर एको मन आहे
0: एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हर आप पूर्ण पूरहे ओ प्रभ आप
0: अनक विस्तार एक ते भय एक अराध पराजित गए
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ उन्नीस श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा दिवो हर नाम
1: साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर
0: सदा सदा प्रभ की गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आओ
1: चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत
0: एक कोट एक आधार नानक मांगे ना प्रभ सार
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए
0: जिन चख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने
1: सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग
0: करे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अंध निर्लाग
1: बड़ भागी जपया प्रसोए नानक नामर ते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत ले
1: जन को प्रभ होए ओ दयाल सेवक कीनो सदा निहाल
0: बंधन काट मुकुत जन भया जन्म मरण दुख परम गया
1: पिछ पुनी शरदा सा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी
0: जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए
1: सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै
0: सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै
0: सो क्यों बिसरै जे बिकते काडै जन्म जन्म का टूटा गाडै
1: गुरपूरै ताते है बुझाया प्रभु अपना नानक जन ते आया
0: साजन संत करो हो काम आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो
0: भगत पाए त्रिए संसार बिन भक्ति तन होसी चार
1: सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का हो तनास नानक नाम जपो गुण तास
1: उपजी प्रीत प्रेम रसाओ मन तन अंतर एही सुआओ
0: नेत्रो पेट रस होए मन बिकसै साधु चरण तोए
1: भक्त जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग
0: एक बस्ती जे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया
1: ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए
0: प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल
0: आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
1: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन ही
0: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए
0: अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन भाई
1: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
0: पली सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूरन गुरुमंत
1: सार संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
0: सुख मणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवी श्लोक
1: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जब अकार कुछ न दृष्टि ताप पुण तब कहते होता
1: जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमात
0: जब इसका वरन चिन्ह न जापत तब हर सो को किसे व्याप्त
1: जब आपन आप अपार ब्रह्म तब हो कहां किस होवत परम
0: आपन खेलिया वर्ती जा नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभु केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गानी
0: जब एक हर गम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो हो कित ठाए
0: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे
1: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार
0: अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तम कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
1: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान
1: जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस
0: जह जो स्वरूपी जोत संग समावै तह किसै भू कौन तृप्तावै
1: करन करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार
0: जा अपनी सुवा आपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई
1: जह सर्व कला आपह परवीन तह वेद कतेव कहां कोचीन
0: जब आपने आप उतारे तो सगन अपसगन कहां बिचार है
1: जह आपन ऊंच आपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गजानो आप
1: जह अछल अछेद अभेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया
0: आपस को आपे आदेश तिहु गुण का नाही प्रवेश
1: जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जह आपन आपा पतियारा तह कौन कथे कौन सुन न हारा
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा
0: जह आप रचियो पर पंच आकार तिहु गुण में कीनो विस्तार
1: आप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत
0: आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार
1: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखिया
0: अपन खेल आप कर देखै खेल संकोच है तो नानक एक है
1: जह अवगत भक्त है आप जह पसरै पासार संत प्रताप
0: दुहु पाक का अपै धनी उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आप है कौतक रै आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग
0: जिस भावै तुसि अपन ना लावै जिस भावै तुस खेल खिलावै
1: बेशुमार अथा अगंत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै
0: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक्की श्लोक
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार
1: जा तिस भावे ता सृष्टो पाए अपने भाणे लए समाए
0: तुम ते पिन्ने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए
1: जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
1: जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
0: जिस राखै तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारै
1: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सिरे एक निरंजन राए
0: जी की जुग जाकै सुभात अंतर बाहर जानो साथ
1: गुण निदान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार
0: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल
1: अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप
0: तर ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾ ਲੈ ਜੀ ਅਨੁਭਵ ਪਾਤ ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੂਤ ਸਹਿ ਤਿਆਰ
1: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਭਗਤ ਕਰੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ
0: ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ
1: ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕੈ ਨਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ
0: ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣੇ ਆਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਪਏ ਨਿਰਵੈਰ ਅੰਦਿਨ ਪੂਜੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ
1: ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪਰਮਾਨੰਦ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਨਕਾਏ ਹੇ ਸੁਆਓ
1: ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਾਪੀ ਖੋਹ ਨੀਰਾ ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨ ਸਹਿੰਦੀਰਾ
0: ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ ਮਨ ਇੱਛੈ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ
1: ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਇ ਲਿਹੋ ਸਵਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰ
0: ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ਜਿਸਮਨ ਬਸੈ ਤੇ ਸਾਚ ਪਰੀਖਿਆ
1: ਮਨ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵਲਾਏ ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਏ
0: ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ ਦਰਗਹਿ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ
1: ਟੀਕਾ ਟੀਕ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਜਾਹੇ
0: ਇਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ ਉਬਰੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤੇ ਆਏ
1: ਫਿਰ ਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੂ
1: ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ
0: ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ
1: ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ
1: ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ
0: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਸੋਤ ਨਿਹਾਲ ਤਾ ਕਹਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਲ
1: ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵਨਾ ਭਲਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਬਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਲਾ ਕਾ ਮੀਠਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਸਕਟ ਮਾਹੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
0: ਨੌਨਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਤ ਤੈ ਨਾਦ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਅਚਾਰਜ ਵਿਸਮਾਦ
0: ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੰਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ
0: ਕਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਬੰਤਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
0: ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦੈ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ
0: ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਤਰ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ
0: ਸਰਬ ਕਰਾ ਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ਮੋਲ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋ ਧਾਰ ਹਿਓ ਸਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭ੍ਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਭੀਖਣ ਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸੋ ਬਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
0: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ਼ਕ ਮਾਨੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਾ ਮੋਹੀ
0: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
0: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨੈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਲਿਖਤ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
0: ਅੰਤਰਗਾ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਚੰਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪੇ ਖਨਹਾਰਾ
0: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਵਨ ਜਾਨੇ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ
0: ਸਭ ਕੇ ਮਦਲ ਪੱਤੋ ਰਹਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹਿ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
0: ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਿਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤਤਨੀ ਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
0: ਆਪ ਸਾਜ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸਾਜ ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਜ
1: ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
0: ਇਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ
0: ਜਾ ਨਾਮਨ ਕਹੇ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤੇਈ ਸਲੋਕ
1: ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇ
1: ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ
0: ਆਸ ਨਿਤਿਆ ਗੋ ਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਦੂਰ ਮਨ ਮੰਗ
1: ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ
0: ਹਰ ਤਨ ਕੀ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ
0: ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਰਧਾਰੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ
1: ਚਿਤ ਚਿਤ ਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ
0: ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ
0: ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੋਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ
1: ਸੰਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਤੋ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਿਸਤਾਰ
0: ਸਫਲ ਜੀਵਨ सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग।
1: जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे।
0: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उतरे तिन कै साथे।
1: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए।
0: मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नाम साध संग लैन।
1: सो प्रसन्न भए गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव।
0: आल जंजाल विकार तेरे ते राम नाम सुरसना कहते।
1: कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभी खेप हमारी।
0: तब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत।
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान।
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।
1: सब ते उच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान।
0: हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए।
1: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध।
0: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान।
1: चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास।
0: सुंदर चतुर तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि।
1: फल तिस जन कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने।
0: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए।
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी।
0: सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम।
1: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै।
0: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए।
1: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु चीत।
0: जन्म मरणता का दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै।
1: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी।
0: दुख रोग बिन से बै परम साध नाम निर्मलता के करम।
1: सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम। 8:24 श्लोक।

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सो।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होरवी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे अवेकनिंग में, इस पूरे जागरण के प्रक्रिया में हमने ये जाना है कि किस तरह से अगर हम रिश्तों को एक नए रूप में देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो परेशानी आ रही थी, जो मुश्किलें आती हैं, जो हर बार हम ये कहते हैं कि रिश्ता सही नहीं चल रहा, वो बेहतर बनाया जा सकता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बच्चे का अपने पिता के साथ हो, या फिर एक स्टूडेंट और टीचर का हो, आज जरूरत है कि हर रिश्ते को हम एक नए अंदाज, एक नए नजरिए और जो हमने जानकारी प्राप्त की है, जो ज्ञान हमें मिला है, उस अवेयरनेस के साथ देखें तो शायद एक नए रूप में नजर आएगा। पति पत्नी के रिश्ते के कई नए प्रारूप हमारे सामने आए हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव हो सकती है, और वो है विश्वास यानी ट्रस्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जब से हमने रिश्तों के ऊपर बात करनी शुरू की है, इतने सारे फोन कॉल आ रहे हैं क्योंकि एक नए अंदाज में हम देख पा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया हर रिश्ते को नई नजर से देखना। और आगे बढ़े उससे पहले एक बार यही बात कर लेते हैं कि ना मैं बता रही हूँ ना आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे एकदम से रियलाइज हुई है कि हम कितना भी सोच लें लेकिन जब हम इस तरह से कार्यक्रम में बैठते हैं तो कुछ और बात ही निकल आती है, एक ऐसी ज्ञान की बात जो हमने सोची भी नहीं होती। तो मैं तो अपने आप को स्वयं मान रही हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ, तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है एक बार फिर उसके बारे में बात करते हैं।
1: जहाँ तक हर बात, हर पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करते, तो ये हर बात बहुत गूढ़ रीति से हमें सारी जो एक्सप्लेनेशन दी है वो निराकार परमात्मा शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो स्वयं इस समय सृष्टि पर अवतरित होकर हम आत्माओं को अपना परिचय देते और फिर जीवन जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, जो जीवन में चलते चलते कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, तो उस यात्रा को सिंपल करने के लिए जो इतना डीप नॉलेज हमें मिलता है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ इट इज इट्स वेरी डीप बट वेरी सिंपल, और वो सिंपल होने के कारण फिर वो इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है।
0: ट्रस्ट की बात करते हैं कि विश्वास, जैसा कि हम शिव बाबा पे कर रहे हैं 100% विश्वास रखते हैं, तो उसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में देखें, हमने रिस्पेक्ट की बात की थी, हमने ये बात की थी, अपेक्षाओं की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, वो सारे एस्पेक्ट्स फिर भी इतने मायने नहीं रखते हैं कि कंपैटिबिलिटी भी है या नहीं। सबसे बड़ा जो, क्योंकि वो रिश्ता बन रहा है जहाँ कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी जन्मों का रिश्ता है, सो वहाँ विश्वास, हम अपने दोस्त पे विश्वास जरूर कर लेते हैं, यहाँ विश्वास, इस रिश्ते में विश्वास कितना जरूरी हो जाता है।
1: विश्वास हर रिश्ते में जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो खून का रिश्ता है उसमें विश्वास करना इजी होगा और जो इस तरह से यात्रा के दौरान जुड़ा हुआ रिश्ता है उसमें डिफिकल्ट है। नहीं, आजकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी विश्वास की कमी है, तो वो तो सबसे ब्यूटीफुल एंड क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, तो उसमें क्यों कमी है। तो ट्रस्ट इज नॉट समथिंग विच नीड्स टू बी यू नो रिलेटेड टू बी अ ब्लड कनेक्शन, इट हैज टू बी अ सोल टू अ सोल रिलेशनशिप। तो विश्वास तो रिश्ते के अलावा भी एक्चुअली हर आत्मा को, हर आत्मा पर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है पहले कि मैं औरों पर विश्वास करना आज क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं शायद आज खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही।
0: नहीं, मैंने ब्लड रिलेशन की बात इसलिए की थी कि हम ये कहते हैं कि चलो उनको तो हम माफ कर सकते हैं, वो है तो हमारा खून ही, हमारा अपना ही है, कोई बात नहीं कर रहे।
1: तो उनको हम माफ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम उनको माफ करना चाहते हैं, बाकी माफ तो हम किसी को भी कर सकते हैं। फॉरगिव, वी कैन फॉरगिव एनीबॉडी, व्हाई, बिकॉज आई नो हाउ टू फॉरगिव, लेकिन हम चूज करते हैं किसको फॉरगिव करना किसको नहीं करना। अगर हमें फॉरगिव करने की कला आती है तो अगर हम एक को कर सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट क्या है, उसको कैसे डेवलप करना, वो मुझे पहले अपने आप के साथ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वर्तमान समय औरों पे ट्रस्ट करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्ट अर्थात फेथ, एक इंटेग्रिटी जो मुझे आप पर या किसी

0: और आत्मा पर करनी है, लेकिन आज जनरली हम डाउट करते हैं. यू नो इवन इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप वो ट्रस्ट बहुत जल्दी हिल जाता है. शिव बाबा हमें बताते हैं कि संशय और निश्चय, यू नो डाउट या ट्रस्ट, इसमें कोई परसेंटेज नहीं हो सकती है. हम जो एफर्ट करते हैं उसमें परसेंटेज होती है, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं इसमें परसेंटेज नहीं होती. हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट
1: बढ़ता जाएगा.
0: तो शिव बाबा कहते या तो निश्चय है या निश्चय नहीं है.
1: लेकिन मैं अपने लिए ये ऑप्शंस रखता हूँ कि अगर मुझे धोखा मिला तो मैं इतना हर्ट या हर्ट नहीं हो जाऊंगी कि मैं अपनी जिंदगी ही
0: ये थॉट पहले से क्रिएट करना कि अगर मुझे धोखा मिला मतलब आई डू नॉट ट्रस्ट, मतलब आई एम ऑलरेडी डाउटिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले व्यक्ति को दे दिया कि इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये धोखा देंगे. तो फिर वेयर इज द ट्रस्ट. परमात्मा यही बताते हैं कि अगर एक भी थॉट डाउट की आए, एक थॉट, ज्यादा नहीं, एक थॉट भी डाउट की आए, तो अभी आप डाउट वाली साइड पर है, ट्रस्ट वाली साइड पर नहीं है. अभी संशय है उस रिलेशनशिप में. निश्चय जिस रिलेशनशिप में होगा जहां एक भी थॉट, वर्ड, एक्शन तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, एक भी थॉट डाउट की नहीं होगी, दैट इज ट्रस्ट. एंड फिर वो इसीलिए परसेंटेज में नहीं हो सकता. जिस दिन तक डाउट्स है माइंड में तब तक हम डाउट वाली स्टेज पे है कि मैं इनको डाउट करती हूँ, लेकिन जिस दिन मन से सारे डाउट्स हट गए, एक थॉट भी डाउट करने आया, उस दिन कह दीजिएगा कि नाउ आई ट्रस्ट दिस पर्सन.
1: लेकिन ट्रस्ट हैज टू बी अर्नड. कहा जाता है कि आपको अर्न करनी पड़ेगी, मेरा विश्वास आपको जीतना पड़ेगा. विश्वास जीतिए आप.
0: ट्रस्ट मुझे करना है तो उसके लिए सामने वाले को कुछ नहीं करना है. आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे हैं. अब आपको ट्रस्ट करना या नहीं करना ये चॉइस मेरी है. आपको अपने आप को प्रूफ करके नहीं दिखाना होगा उसके लिए, क्योंकि वो में भी समय लगता है कि हम आपको जानने की कोशिश करते हैं. लेकिन एक्चुअली कहा जाता है कि ट्रस्ट तो फाउंडेशन है. सो दैट मींस वी आर ट्राइंग टू से कि हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं और बनाते बनाते धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जान लेंगे तब ट्रस्ट वाला फ्लोर बीच में डाल देंगे. बट वी सेड इट्स द फाउंडेशन, सो दैट मींस इट विल हैव टू बी द first thing. It can't be something that is developed over a period of time, because let's say in a husband wife relationship, so today you're meeting for the first time. अब आप क्या कहना चाहते हैं कि एक दो तीन साल के अंदर अंदर धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप करें? How do I go about it? Or should I say we begin it with trust? Because तब तो आपकी strong foundation होगी, नहीं तो foundation doubt की है. Doubt की foundation पे तो वही इमारत वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि doubt की foundation पर खड़ी हुई जो अगले एक दो तीन साल भी बीते उसमें thoughts of ये ऐसा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं. ट्रस्ट इज ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स.
1: ट्रस्ट का मायने क्या है कि मैं आपको पोजेस कर लूंगी, कि आप मेरे ही हैं? अगेन ट्रस्ट इज समथिंग हैज टू बी यू नो एक्चुअली डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैं आप पे कंप्लीट विश्वास करती हूँ. क्या मैं आप पे एहसान कर रही हूँ? वन. सेकेंड, उसका पूरा पूरा मतलब क्या है कि मैं आप पे कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ?
0: दूसरे पर ट्रस्ट करके हम दूसरे पर एहसान नहीं करते, हम अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं. क्योंकि जितना समय हम डाउट में रहते हैं अंदर डिस्टर्बेंस,
1: पेन रहती है, बहुत पेन है,
0: एक इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूस, मतलब अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स. और जिस क्षण ट्रस्ट करना शुरू किया ऑल वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स ओवर. तो वो एहसान दूसरे पर किया या अपने ऊपर किया? अपने ऊपर किया कि सारे जिसको कहें चिंता, बोझ, एंग्जाइटी, इट्स ऑल ओवर, बिकॉज नाउ देयर इज नो डाउट. वी कैन डाउट ऑन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. कितनी चीजें हैं जिसमें हम डाउट करते हैं, और जब वो सारा हट जाता है तो सोचो अंदर क्या होगा. दैट इज पीस, दैट इज हैप्पीनेस, जहां अंदर एकदम स्थिरता आ जाएगी. तो ये किस पर एहसान किया? अपने पर एहसान किया. दूसरे ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, लेकिन जिस क्षण हमें लगा कि अब हम कर सकते हैं, हमने करना शुरू कर दिया. आज हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जब कोई हमारे सामने कुछ कहता है या कुछ करता है तो हमारे मन में ये डाउट होता है कि क्या ये सोचते भी यही है। व्हाई?
1: हाँ, अगेन यू नो, क्योंकि कह तो वो कुछ रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अंदर हमें नहीं मालूम कि, क्योंकि लगता ये है कि डिफरेंस होगा जो सोच रहे हैं और कहने में।
0: क्यों ऐसा लगता कि दूसरे के अंदर
1: होगा? हम खुद ऐसे होते,
0: क्योंकि हमारे अंदर ऐसा है। सो सी, रिलेशनशिप इज माई कॉन्शियसनेस में आपकी इमेज। अब मेरी कॉन्शियसनेस की जो क्वालिटी होगी उसमें ही तो आपकी पिक्चर आकर बनेगी ना। मतलब मेरे पास कलर्स की क्वालिटी क्या है, दैट इज माय कॉन्शियसनेस। अब उन कलर्स से मैं आपकी पिक्चर बनाऊंगी, तो जो क्वालिटी ऑफ कलर्स होंगे वो उस पिक्चर के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे बिल्कुल। अगर मेरी कॉन्शियसनेस में ये इंटेग्रिटी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इफ माय थॉट्स वर्ड्स एक्शंस आर सेपरेट, तो मुझे क्या लगेगा कि बाकी लोग भी कैसे है? ऑटोमेटिकली मैं कैसे इसको बिलीव करूं, क्योंकि मेरे पास वो कलर्स ही नहीं। तो जो कलर मेरे पास है ही नहीं, तो मैं दूसरे को उस कलर में देख नहीं सकती हूँ। मेरे पास वही कलर है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर सारा दिन में कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं सोच कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, कर कुछ और रही हूँ, तो मेरे पास वही रंग है। अब वही रंग से मैं आपकी इमेज अपने कॉन्शियसनेस में बनाऊंगी, तो आपकी इमेज भी यही बनेगी कि आप भी सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। अगर आप कहते भी हैं कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वही बोल रही हूँ, आई डोंट हैव द कलर, आई डोंट हैव द कलर,
1: आई कांट रिलेट टू इट,
0: आई कांट रिलेट टू इट, आई डोंट हैव द कलर। इट्स लाइक सेइंग कि आई हैव रेड कलर, तो मैं आपकी पिक्चर रेड कलर से ही बनाऊ, आप बोलो नहीं आई एम ब्लू कलर, आई डोंट हैव ब्लू कलर,
1: आई डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ अ ब्लू कलर,
0: गुड, आई विल स्टिल पेंट योर पिक्चर विद रेड कलर एंड आई विल स्टिल होल्ड ऑन टू द थॉट, नहीं आप सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे। तो इट इज इंटेग्रिटी एट द वेरी रूट लेवल, और ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातों में नहीं, लेकिन सारा दिन में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में। अब जब हम वो ट्रस्ट का कलर अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर देंगे, और वो कैसे होगा, जब मेडिटेशन से हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं। अभी तक हम जो सोचते हैं वो नहीं बोलते, कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं लोगों को खुश करना, कहीं ना कहीं किसी को इम्प्रेस करना, तो प्रिटेंशन क्यों थी अभी तक, क्योंकि हमने सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं एक शरीर हूँ, पोजीशन हूँ, स्टेटस हूँ, एक पर्सनालिटी जो मैंने क्रिएट की है, तो एक आउटर पर्सनालिटी है, और उस आउटर पर्सनालिटी को मुझे सारा दिन दूसरों को क्रिएट करके दिखाना पड़ता है। एंड अगेन इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे बार बार ये डिसइंटेग्रिटी से चलना पड़ता था, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर बेस्ड थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो लेट्स से मैं इस टाइम बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत उदास हूँ, तो आप सोचेंगे अरे आप भी उदास होते हैं, तो और आपका मेरे बारे में ऐसा सोचना मेरी सेल्फ एस्टीम को क्रैश कर देगा। अगर मेरी सेल्फ एस्टीम इस चीज पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एंड नॉर्मली आज दिन तक हमारी सेल्फ एस्टीम औरों के ओपिनियन पर बहुत ज्यादा बेस्ड थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को छुपा के रखना पड़ता था, और हमें वही चीजें बोलनी पड़ती थी जो औरों को अच्छी लगती है, क्योंकि हमें उन्हें खुश करना है। तो आई एम चीटिंग माई सेल्फ, तो एक्चुअली इफ यू सी सारा दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम चीटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक वट आई एम थिंकिंग। वाई? बिकॉज यू माइट नॉट लाइक इट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट देन यू डोंट लाइक मी, एंड इफ यू डोंट लाइक मी देन आई डोंट लाइक माई सेल्फ।
1: That's important.
0: So it's very deep. तो सारा दिन में आई एम गोइंग अराउंड इम्प्रेसिंग पीपल, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट कांट बी माई सेल्फ, आई कांट बी वट आई वॉन्ट टू बी। स्पिरिचुअलिटी ने हमें अपना सही परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जिसके अंदर इतनी ब्यूटीफुल गुण है, शक्तियां हैं, वर्तमान समय कुछ एक कमजोरियां भी है, बट दैट्स ओके, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई डू नॉट वॉन्ट टू क्लेम टू से दैट आई एम परफेक्ट,
1: बट आई कैन ट्रांसफॉर्म ना, दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग
0: ऑन दैट, बट टू वर्क ऑन दैट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, आई हैव टू एक्सेप्ट कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन आज दिन तक आई वॉन्टेड टू हाइड
1: फ्रॉम माई सेल्फ, यू नो,
0: कि वो सारी कमियों को छुपा के एक इमेज क्रिएट करना चाहते थे कि आई एम जस्ट फाइन द वे आई एम, तो देन आई कुडंट बी माई सेल्फ। I couldn't be myself. So because of that, I had to keep on cheating myself. So mera apne pe trust. और जैसे मैं हूँ वैसे ही सब लोग हैं. वो मुझे 100%.
1: वो भी कई बार आप भूल जाते हैं. इनफैक्ट बहुत ज्यादा वक्त आप खुद तो सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, हर बार आप अपने आप को याद दिला देते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच हो जाते हैं ये तो भूल जाते हैं. आपको वही मुझे आप ही दिखेंगी जो जिस रूप में आप हैं. आई विल फॉरगेट. ये अभी भी इस पे काम करना बाकी है.
0: या दैट्स ओके. बट यू डू सी, जब हम अपने अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं कि आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, कि मेरे अंदर ये गुण हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन ये कमजोरियां भी हैं. बट दैट्स फाइन, यू नो. सो दैट इज एक्सेप्टेंस, कि इट्स ओके, ये कमजोरियां हैं एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. इंटेग्रिटी, जब मेरे अंदर ये इंटेग्रिटी आ जाएगी देन आई कैन एक्सेप्ट अदर पीपल ऑल्सो इन द सेम वे, कि इनके अंदर भी ये गुण हैं लेकिन ये थोड़ी कमजोरियां हैं, बट आई एक्सेप्ट देम विद बोथ द थिंग्स. तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको मेरे सामने आने के बाद प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि आई एक्सेप्ट यू. हम प्रिटेंड किसके सामने करेंगे, जो हमें वो कमजोरियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते.
1: तो इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता यही है. बिगिनिंग में तो देर इज अ प्रिटेंशन, लॉट ऑफ प्रिटेंशन, बट ग्रेजुअली, बिकॉज कब तक, क्योंकि आप 24 घंटे का साथ रहेगा.
0: अब उस रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा दिन प्रिटेंड करना
1: बहुत मुश्किल हो जाता है.
0: आप ऑफिस थोड़ी देर प्रिटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कभी आप किसी कोलीग के साथ हैं, कभी, लेकिन जिसके साथ पूरी जीवन बितानी है उसके सामने प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल होता. और तब जब कहीं वो प्रिटेंस गिर जाता तो इट्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन.
1: एंड देन द कंप्लेन कम्स, इज लाइक आपका असली चेहरा अब दिखा. ये
0: एंड स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जब आपने कहा ना कि जो पहले से जानते थे एक दूसरे को और फिर उस संबंध में जुड़े, लेकिन वो जो पहले जानने वाला पीरियड था
1: वो डिफरेंट था ना. वो प्रिटेंशन वाला था कि आप दो घंटे मिल रहे हैं, चार घंटे मिल रहे हैं, यू आर योर बेस्ट. That I have. That is actually, yes, that's understandable.
0: लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड जब आप ये एनर्जी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर वीकनेसेस, तब दूसरे को आपके सामने प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा. एंड तब वो जो सोच रहे हैं वो बोलेंगे. तो औरों को हमें प्रूफ नहीं करना, लाइक यू सेड ना, यू विल हैव टू विन माय ट्रस्ट. नहीं, आई हैव टू बिकम स्ट्रांग इनफ
1: टू ट्रस्ट यू. ट्रस्ट का रियल सेंस में मीनिंग क्या है? मैं आप पे क्या कैसे ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं क्या आपसे उम्मीद कर रही हूँ, या क्या मैं आपकी, क्या विश्वास का बेसिक मतलब क्या?
0: जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं आ सकती. एक्सेप्ट और एक्सपेक्टेशन क्या मतलब हुआ? Then that means there is again an expectation that
1: you'll change. You'll do this for me, you'll do that for me.
0: तो आप हर टाइम कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं होगा हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो ट्रस्ट मतलब मैंने एक इमेज बना ली कि आपको ऐसा होना है. जितने दिन तक आप इस इमेज के अनुसार चल रहे हैं, आई से आई ट्रस्ट यू, जिस दिन वो इमेज के कॉन्ट्रडिक्टरी आपने कोई कर्म कर दिया या कोई बोल बोल दिया, तो हम कहेंगे मेरा विश्वास टूट गया. क्यों विश्वास टूट गया? क्योंकि वो इमेज टूट गई. तो विश्वास क्या है कि आई ट्रस्ट यू. Basically, for me, it would be विश्वास वो है कि I trust that you are feeling the same thing what you're saying. That's the deepest. क्योंकि अगर आप उस level पर उसको ले आएंगे तो बाकी सारी चीजें तो सारी आराम से उस parameter के अंदर fit हो जाएंगी. लेकिन deepest ये है कि छोटी से छोटी बात में आप वो ही कह रहे हैं
1: जो आप सोच रहे हैं,
0: जो आप महसूस कर रहे हैं. आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. विश्वास तभी टूटेगा ना.
1: हाँ, यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, मैंने आपको जैसे है आप, जिस भी रूप में आप, वैसे स्वीकार लिया, और ये मैं ये मेरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं. आप एक तरह के थे जब मैं आपके साथ मिली, आपके साथ एक रिश्ता शुरू हुआ. आप सच में विश्वास रखते थे, सच में. एक जनरल बात मैं कर रही हूँ. जिंदगी चलती गई, आपको देखा मैंने, धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सच पे जो आपकी अडिक्टता, जिसको मैं बहुत प्रशंसा करती थी, आपको एक्सेप्ट कर रही थी या कर रहा था, आप बदल गए. जिंदगी ने बदलाया या जो भी हुआ, मैंने देखा कि
0: आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया.
1: तब तब भी मैं आपको एक्सेप्ट करती जाऊँ, बुरा लगा मुझे क्योंकि मैं उस आपकी जो वो गुण था उसको बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन तब भी मुझे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ और यहाँ मुझे लगा कि मेरी ट्रस्ट ब्रेक हो गई।
0: नाउ आई वुड थिंक इन दिस कि आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, ये आपकी गलती है या मेरी गलती है?
1: मेरे सामने नहीं बोल रहे, कहीं और बाकी व्यवहार में
0: नहीं, पहले यहाँ। सी द होल एंटायर रिलेशनशिप इज फर्स्ट द एनर्जी एक्सचेंज हियर बिटवीन टू पीपल, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम तब होगी ज्यादा जब आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कहीं और बोल रहे हैं तो आई वुड प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि आप वो क्यों बोल रहे हैं, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट विद यू, लेकिन मेरे सामने जब आप बोलते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ योर एंड माई ट्रस्ट, यू नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ट्रस्ट विद द अदर पीपल, लेकिन हम कहते हैं मैंने आप पर पूरा विश्वास किया, मैंने हर चीज पर पूरा विश्वास किया, आपने झूठ बोला तो मेरा ट्रस्ट टूट गया। हम ये नहीं उस पर विचार करते कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलना क्यों पड़ा।
1: जब मैं कुछ ऐसा कर चुकी हूँ या किया जो आपको पसंद नहीं आया,
0: अगेन जब आपने कुछ ऐसा किया जो आपको पता है कि अगर आपने सच बताया तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट एंड आई विल गिव आई विल नॉट लाइक इट और वट एवर, तो तब आपको झूठ बोलना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम किसकी थी? My lack of acceptance, मेरे अंदर accept करने की ताकत नहीं थी, इस ताकत की कमी होने के कारण आपको मेरे सामने झूठ बोलना पड़ा।
1: लेकिन
0: अब हम ये कह सकते हैं लेकिन आपने गलत किया, आपने झूठ बोला, but we are not here to look at everybody else's faults. Yes, a lot of people in the world making lot of mistakes, but we can't change them. We are in every interaction, we are going to see मैंने क्या किया इसमें, बिकॉज मैं उनको नहीं चेंज कर सकती कि वो सच बोले, लेकिन मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दूं कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़े।
1: लेकिन रिश्तों में यही एक कहीं ये जो माइंडसेट चेंज होने की बात है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं। हर रिश्ते में वो नहीं दिखता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता, तो जहां से मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ, ऐसे एक सिचुएशन में आपने एक तरह से बिहेव किया, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वही सिचुएशन अगर चार साल बाद आई, आपने अलग तरह से बिहेव किया, अलग तरह से आपका बिहेवियर था, अब मैं किसको एक्सेप्ट करूं, ये वाले को एक्सेप्ट करूं या ये वाले को एक्सेप्ट करूं?
0: जब हम एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करते हैं तो हम पूरे पैकेज को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चलते चलते इस यात्रा के दौरान उतार और चढ़ाव आ सकते हैं, परिस्थितियों के कारण, कोई और इंटरनल टर्मोइल के कारण, मे बी द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट कुड बी एनीथिंग, बट देन आई हैव एक्सेप्टेड एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट, लेट्स से एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एक ने दूसरे से झूठ बोला, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट टॉक इट आउट की इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यू नो नॉर्मली क्या होता है, आपने मुझसे झूठ बोला, आई एम सो हर्ट कि मैं विथड्रॉ कर जाती,
1: मैं बात ही नहीं करूंगी,
0: मैं इतना हर्ट हूं, अब मैं अपने दुख में घुलती रहती हूँ, मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, ऐसा किया क्यों, एंड आई डोंट लाइक यू,
1: एंड यू नो व्हाट हैपेंस, अंदर तो ये दुख चलता रहेगा, ऊपर से आई विल क्रिएट अ फेस कि आई एम ओके, यू नो दैट्स अगेन अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट, कि ये भी कि मैं अंदर से तो उतनी ही परेशानी, और ये परेशानी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऊपर से आई विल क्रिएट अ फेस कि इट्स ओके
0: या बट द थिंग इज कि जैसे ही सी व्हाट हैपेंस इज हम हर्ट जब हो जाते हैं कि आई एम हर्ट राइट एंड नाउ आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू हर्ट मी, सबसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम कि यू हर्ट मी,
1: हमेशा कोई और मुझे चोट देता है।
0: पहले तो उस बिलीफ सिस्टम को जब हम चेंज कर देते हैं कि यू कैन नॉट हर्ट मी, आपने जो किया सो किया, मैं हर्ट हो गई उससे, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं थी उस बात को स्वीकार करने की, तो उससे क्या होगा, मेरी आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। अभी तक नेगेटिव एनर्जी क्यों जा रही है, यू हर्ट मी, आपने मुझे धोखा दिया, नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, आई एम हर्ट राइट नाउ, इट्स माई फॉल्ट, यू हैव डन व्हाट यू हैव टू डन, व्हाई एम आई हर्ट। तो पहले तो अपनी काउंसलिंग कि व्हाई एम आई हर्ट, वर्क ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू बी स्टेबल, दूसरे ने कुछ किया बट व्हाई एम आई गेटिंग अफेक्टेड, तो पहले अपनी काउंसलिंग करके अपने आप को स्ट्रांग बना ले, फिर हमारे अंदर वो ताकत होगी दूसरे की हेल्प करने की, कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट हैपेंड, बट आई एम एबल टू टॉक विद दैट कंपैशन ओनली व्हेन आई डोंट हेट यू, बट जब आप मेरे को झूठ बोलते हैं तो आई हेट यू एट दैट टाइम, तो हेट एंड कंपैशन, गुस्सा एंड लव,
1: इन फैक्ट कैन नॉट कम टुगेदर. एंड मैंने आपको पहले ही कटघरे में रख के आप पे पूरा इल्जाम लगा के आई ऑलरेडी एक्चुअली लाइक यू नो आई हैव मेड यू अ क्रिमिनल ऑलरेडी.
0: तो फिर आपको मेरे से कंपैशन नहीं मिल सकती है उस हालत में. क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिम्मेवार ठहरा दिया मेरे दर्द के लिए. जब मैं आपको अपने दर्द से अलग कर पाती हूँ कि आप अलग हैं, मेरा दर्द मेरी सेल्फ क्रिएशन है, तो पहले सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इट्स माय क्रिएशन सो आई हील इट. एंड जब मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ, हील कर लेती हूँ, तब मेरे अंदर वो ताकत आ जाती है कि आपके अंदर जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज दैट्स अ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप और क्या है कि आप किसी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं. एज योर पार्टनर इन लाइफ आई शुड बी एबल टू हेल्प यू थ्रू दैट. लेकिन हम इतने अपने ही दर्द में इतने घुल जाते हैं और दूसरे पर इतना ब्लेम डाल देते हैं कि दूसरा किस दौर से गुजर रहा है
1: ये हम भूल ही जाते हैं कि हाँ दैट्स ट्रू. और गलती करने का जो स्कोप हर एक की जिंदगी में होता है,
0: गलती वो भी समझनी पड़ेगी इन द राइट पर्सपेक्टिव.
1: गलती वो गलत है भी या नहीं.
0: ये हमने उसको गलती माना, तो पहले तो उसको भी तो डिस्कस करके वो पर्सपेक्टिव राइट लाना पड़ेगा. लेकिन वो तभी हो जाता है व्हेन आई लव यू इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव डन.
1: दैट्स व्हाट वी से अनकंडीशनल लव, द वे यू सेड, कि द वे शिव बाबा.
0: एन अनकंडीशनल लव इज वेरी इजी, ओनली एंड ओनली इफ आई अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड. अभी वो लव है लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे दर्द आ गया. मैंने ये सोचा आप मेरे दर्द का कारण है, तो मेरे प्यार की जगह गुस्सा आ जाता है. तो और गुस्सा जहां आया वहां प्यार नहीं है.
1: बुद्ध प्यार और नफरत सिक्के के दो पहलू हैं कहा जाता है कि नफरत ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है. ये भी बहुत बातें कही जाती हैं.
0: प्रेम मुझात्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, नफरत नहीं. नफरत एक संस्कार है जो बन चुका है, उसको तो हम हटा सकते हैं. लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उसमें प्रेम और नफरत दोनों नहीं है. बिकॉज आई लाइक ओनली दैट लव. सो लव इज माई ओरिजिनल नेचर एंड आई एम filled with it to be able to give it to everyone else.
1: Sister Shivani, aaj trust ko ek naye andaaz mein dekhne ki koshish ki. Ab vishwas ek aisi cheez thi jo hum dusron par karte the, lekin aaj ye baat phir saaf ho gayi ki main se hota hua hi har cheez jayegi, to wo kar kyu rahi hu apne liye, you know, I become very important. Bahut bahut dhanyawad is puri baat cheez ke liye. Om Shanti. कोई भी रिश्ता कहा जाता है कि उसकी नींव अगर मजबूत हो तो फिर वो इमारत या वो रिश्ता बहुत सुदृढ़ होता है. पति पत्नी के इस रिश्ते में हमने देखा कि हर बार हम कहते थे कि नींव विश्वास की है, लेकिन आज विश्वास डगमगा रहा है. तो वो किसी और के कारण नहीं बल्कि हमारे अपने ही कारण. ये बात अगर समझ में आ जाती है तो रिश्तों को एक नया रूप दिया जा सकता है और विश्वास को दोबारा कायम किया जा सकता है. ये भी बात कि एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा नहीं हो सकता. जब मेरे ही हाथ में है तो मैं विश्वास दोबारा कर सकती हूँ. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं.
2: हमारे फोन नंबर है 09999 344555, 09999 344666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com.
1: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में इन दिनों हम बात कर रहे हैं रिश्तों की. रिश्ते जो हमारी जिंदगी में रस लाते हैं, हमें जिंदगी जीने का नया अंदाज देते हैं और जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं. दोबारा आपसे होगी मुलाकात और कुछ खास रिश्तों के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: थैंक यू।
1: आदम गुड डे यार,
0: कैंट बोली होगी। थैंक यू। सत श्री अकाल अंबर, की हाल है? सत श्री अकाल
2: रंजोत अंकल जी एंड कृष्णा अंकल जी।
0: सत श्री अकाल,
1: किवें हो?
0: बहुत वधिया। आवाज थोड़ी बड़ी दूर आंदी पई है। वधिया तुसी बड़ा, तुसी दसो।
2: हां, तुहाडा दसो।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टर्न विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji,
2: 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji,
0: stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: Oh, oh, oh.